बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल, रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, घबराना कहीं तेरी है जमीन, तू बढ़ता चल बढ़ता चल, तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना